0: ལུག ཆུང གི སུང མ ཚན པ རྒྱ བ སེམ ཁམ གི ངོ ཚ ཐུག ཚེ ལུག ཉི ཤུ ཙབ དུ མེ ཏོག ཁང པ ནས ཆོས བ
1: 我走三次塔卡里下前走塔卡里我走三步退步移动三步退步移动三高一连行我要有马蹄行我要有马蹄哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦 你先马爹，两个车子今年肯定给没到就过去，咱们进了这间队时，下不过是热度。俺做两个车子今年不让给明年运，可以通行。明年交给他，现在对的。爹，俺做错不得的，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹 अरे गुदा ऐसी ऐ कुछ मत तो कर ले
2: तेरे संग कहीं बचा दोस्त तो कक्षा छह के दे में तो चुका हुए बचा अन्य क्या चुका है जो
1: मैं तो चम शे मैं तो
2: लो चो क्या से ता हा शुदा
1: यों आ ए
2: यो ओ मैं तो दी का चम शे की गुरु शा
1: तो न ने दे मैं तो शे मा छे बदो गु दे ओ बे तो न ने मैं तो शे छे छु गु
2: ओ
1: ओ
2: ओ
1: दे
2: ओ
1: छि शे
2: ये ई
1: क्यों बे जो
2: Chishinda, misai me dodi ge ge kobi ni gu gyo ge yi. Me ni ge chung che gu ge ge ge gyum duwa.
1: Nishinsu,